एक के हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी।

आन अवर सिंजान न करी। ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

गादी बढ़ियाई, सगरे जग की बर गुरियाई, सो हम देन उठत इस समय जिसके अगे त्रिलोकी नमे, जिदे अगे सारा त्रिलोक नमस्कार कर रहे असी ते ओ गद्दी इनू देन लगे हां। भाव कहण दा सा संगत गुरु हरगोबिंद साहिब दी जपजी साहिब दी सुनाउण बदले चित जोड़ के इतनी प्रसन्नता, पर की किया अब भी धन जन्म भव पयो, जन्म मरण दुख सब मिट गयो, कि अजे भी तेरा जन्म धन है, तेरा जन्म मरण सारा ए भी मिट जाएगा, करियो मनोरथ जो अब जैसे सो लीजो नै बिलमो कैसे, जेड़ा मनोरथ बनाया हुण ए मनोरथ तेरा भी पूरा होएगा, कह कर सो घोड़ा मंगवायो सुंदर जिस पर जीन सुहायो, आखो सतनाम। ओह घोड़ा सुंदर जीन वाला महाराज जी ने मंगवाया, ए सूरज प्रकाश दी पंक्ति है, 1.25 लाख की कीमत जाही, होए प्रसन्न बख्शत है ताई, प्रसन्न होके ओ घोड़ा बख्शिया है, धन गुरु हरगोबिंद जी ने। कवि किवें लिख रहा है आओ बड़े

अपने पल्ले नहीं पांदी पाव है जुबान जदों तो नाम जपन लग पवेगी मन करके फिर कदी अपनी जुबान तो किसे नु माड़ा नहीं बोलेंगी ऐ रसना।

उस वाहिगुरु का सिमरन नहीं करती। ते सतगुरु जी कहंदे ने इस रसना नू, इस जबान नू तिल तिल करके कर।

बार न समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नूं जवान बना दे रसना बना दे ताकि तेरा जस गाइए।

स्वर्ग भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, पर तू ये दस अंत वेले मेरी सहायता करेंगे। ते मां ने कहा, बेटा मैं तेनु पालिया,

ऐसी मालक दी मेर होई मिर्ती लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी का ढेर है।

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिस दा शिंगार ए पागां वाला तख्त है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हां, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिआं नूं सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला सिक्का

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

अपने बच्चियां नू कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नू वारी वारी मौत दे मुंह च धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती दे जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओही ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकते। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह होंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी के किनारे वाल जा

जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुत्ता पिया सी उसनु वैराग में नींदर तू जगाउण आए ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तू पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी अते इस तू पहला उसके माता पिता उसनु लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है इसनु वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी उदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया पहला सन्यासी बनिया उसका नां नारायण गिरी पै गया फिर बैरागी बनिया योग सिख्या ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दखण

आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हैं क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान गए। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हू पलंग तू थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नू उल्टान दी कोशिश की थी। पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सकया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

सफाई सी। उचता से इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखते सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू की रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

उसने सिर चुका दिता। अते इस तू बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने बड़े प्यार नाल माधो दास नू देखे है।

लम्बिया बाहवां वाले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास वाल देख के मुस्कुरा रहे सन। ते महाराज ने माधोदास फिर भी पूछता है तुसी कौन हो, तो गुरु महाराज ने अमृत परी मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया मैं गोबिंद सिंह हां। बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरां थले लताड़ दे पए ने जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे।

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसण लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने

पंजाब वल तोरे आ जेड़ा क्यामता जगाउंदा पचाल लियाउंदा खून दियां नदियां बगांदा होया पंजाब वल वध तुरे आ। किसे ने पुछया बंदा सिंह तुसी ये की कर रहे हो ता बंदा सिंह बहादुर ने कहा मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा मैं जालमा दा नाश कर रहा उन्हां किलिया नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे ने ओह शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। इह कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी फौजा दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद

0: प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हरो
1: नानक शरण पर्यो दुख भंजन

अरुणालय है अर्थालय है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणे करना में सब दुख हरो सर्ण योग दयाले हे सर्ण योग दयाले दीनानाथ मैं आ करो दीना

ठंडे बाटे दी पौहल नू छक लिया। सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गया, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

राग गौड़ी दीपकी विच ऋषभ कोमल, मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण, वादी षड़ज, संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

उस वह करके अरसात समुद्र की मत कहो, काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो, काल कृपा ना बिनती, काल कृपा ना बिनती, ना तो तुमको सब नए कर हो। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे खंडो, कूट बराद हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरत रखाओ, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहे।